0: विद्दु and when is this thing everything is have done then how that
1: ve prikazano
0: ta ta ta ga di di da di nam tak
1: shiva ko klesh
0: da gidi gidi blag di kira ka gidi gidi grag da du da di ka bai ta re ge ge yi de एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है निंद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: ओ सहस्र चक्र

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Satguru Deva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरट है।

0: भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी समहदेव की जय।
1: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी श्या महादेव की सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलखपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म।

होली श्री दीप नरयम भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद

0: ने की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय। सत सनातन धर्म की जय।
1: Harsha Devi singing bhajan.
2: Teraz bude spievať bhajan Harsha Devi.
1: Prosím.
3: Om Sri Alakpuri Ji Mahadeva Ki Jai. Sri Sri Deveshwar Mahadeva Ki Jai. Sri Deep Narayan Bhagwan Ki Jai. Sri Madhavananda Holy Guru Ji Sri Sata Guru Deva Ki Jai. Vishwa Guru Ji Paramahansa Maheshwarananda Yogi Raj Ki Jai.

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्यः पूर्णोशान्तिः। ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। ॐ अलकपुरीजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

0: If you are causeless, if you are causeless, you will not lose that power. And Vishnu make a trick. First, he wanted to snatch the kabats, the Krishna kabats. And he disguised himself, the different form of a poor Brahman. And he became a very poor Brahman and he went to the Shankarchud's house. And Shankarchud, oh Shankarchud, look at this, I am so weak, I am so hungry, I would like to ask something, can you please give me something, I am begging you. And Shankarchud is Danava and also spiritual. If one Brahmin, poor Brahmin asks, then can you give me something? So without asking also, that our tradition is Brahmin. Brahmin means who knows the Brahma, who knows the Veda, who is the intellectual person. We love to donate because that dhan, that asset will spread the knowledge to the towards the world. So that's why they donate. Brahman, priest, and then intellectual person. And he came, he arrives on his gate. So he's very adorable and kind and generous demon. And he said, well, I can give you. That's not a problem. That's okay. So, and what would you like to ask? And the poor Brahmin trickfully asks, well, I don't need anything except your Krishna kavach, he said. Oh, Krishna kavach? What you need? Who are you? I thought you are asking some rice or some money or some land. You are asking Krishna kavach. That is my favorite things. He said, well, you already promised that you want to give. If you don't want to give, that's all right. I'm going. You know that. Once you promise and you don't give, what will be the result? And he always wanted to curse or something, obviously. And Shankarchud is scared. Well, all right. I'm going to give you Krishna kavach. And he hand over the Krishna kavach to the Brahman. So his first power was Krishna kavach. That was meditative power from the Brahma. Then the Vishnu snatched it. So that's why when you don't take that ghee from the straight finger, what you do? Squeeze. So in the same way, the Vishnu also did the trick and snatched the Krishna kavach. Shankarchud bahut balshali tha. और उसके पति बता तो पत्नी के धर्म से वो बलशाली हो रहा था लेकिन क्या है उसके साथ साथ में कृष्ण कवच था और विष्णु ने क्या किया कि कृष्ण कवच छीनने के लिए क्या किया कि उसने एक गरीब ब्राह्मण के भेष धरा गरीब ब्राह्मण के भेष धरने से उसने शंखचूड़ के साथ में जाकर क्या है कि भिक्षा मांगा ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही बोल के मांगा जब भिक्षा मांगा तो क्या है कि शंखचूर के साथ में तो असंख्य धन था दौलत था सारे था एक वृद्ध ब्राह्मण के लिए देने के लिए क्या नहीं था उसने अच्छा ठीक है मैं देता हूँ बोला तो ब्राह्मण ने बोला चलो संकल्प तो कर लो पहले तो जब जो कोई भी संकल्प करते हैं तो देना ही पड़ता है नहीं तो उसको श्राप लगता है और उसको क्या है श्राप से और पाप लग जाता है तो ब्राह्मण के देने के लिए उसने संकल्प कर लिया संकल्प करने के बाद में उसने मांगा तो क्या चाहिए वृद्ध ब्राह्मण तो उसने बोला कि मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपके पास में जो कृष्ण कवच है वही चाहिए तो वो क्या है कि आश्चर्यचकित हो गया अरे ऐसा वृद्ध ब्राह्मण मैंने सोच के संकल्प किया था ये तो झूठे है ये तो जाली है तो वही के भगवान के ये माया के खेल है चलो संकल्प तो कर लिया है अब बोलने के बाद में देना ही पड़ेगा तो उसने क्या है कि दे दिया तो कृष्ण कवच तो वो दानव का आधा बल कृष्ण कवच में था वो निकल गया जय बोलिए शिव भोले बाबा की जय सो नाउ वी विल हैव वन भजन्स एंड वील गो अहेड सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वी कीप डूइंग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट्स अ समराइजिंग वी ऑलरेडी फिनिश 5 चैप्टर्स व्हेन वी कम अराइव हियर हरिओम
1: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री देव पुरुष महादेवा की जय श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर पर श्री स्वामी

chakra, there is a mark of the insect. So, and that's amazing, isn't it? This Puran has been written thousands and thousands of years before. And the Nepal is just discovered, Nepal, how many years? The history is maybe a couple of thousands of years. And Gandaki in the naming also, couple of thousands of years. But you can see there is a such a practical things. I did myself. I went in Kali Gandaki after reading this book. And I found out many saligrams. When we break that saligram, inside there is a chakras. And still you can, yourself in your life, you can go and prove yourself. And it is saying that if you take bath in Gandaki, whatever the water is coming from the saligram, you will have the many, many lives punya. तो आपके लिए क्या है बहुत पुण्य को प्रदायक होगा अगर काली गंडकी में जाके आप स्नान करोगे तो इसलिए दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी एंड प्रूव्ड स्टोरी प्रूवन स्टोरी एंड नॉट ओनली दैट सेइंग नॉट स्टोरी नॉट दैट इज ओनली कंजर्वेटिव और समबडी सेज इन बुक यू कैन गो एंड एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन एंड और यू कैन फाइंड आउट हियर एज वेल सो दैट्स व्हाई इन नेपाल द काली गंडकी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिमेज गोज And at the that's origination of the Kali Gandaki is Muktinath, and in the Muktinath you can see the still the fire continuous fire. It's not man-made fire; it's a holy fire. You can see there the fire is flaming all the time. It's like a volcano, but it's not volcano because of some the chemical. The fire is coming there continuously, and it is saying the fire of Brahma, Vishnu, Mahesh. And so in the river you can see the saligram. And wherever in around the world it is supplying now, that is from the Kali Gandaki. And Kali Gandaki is Tulasi's physical body. That is after she loses her that integrity. She loses her patibrata dharma. So that Kali Gandaki river is the body of the Tulasi. And when she gets the blessings, Tulasi, and from that day, Tulasi and Vishnu is together. And Tulasi went to Vaikuntha. And she's worshipping everywhere around the world. You also love Tulasi, isn't it? Basil. The basil hops in Europe, in America, in Australia, any countries nowadays. The basil have got different species. But if you find the original one, that is a wonderful. And newly invented here, there is in India, there is one research center called National Center of Biological Science that did the experiment. That short form is NCBS. So, and that technology, that laboratory tested, and Tulasi have got such a power, it has got antifungal, antibiotic, or anti-cancer elements in it. That's why it's already herbs, popular herbs. And later on, that Tulasi is acceptable, and when you die also, the Tulasi is very important. And in everyone's house, there is Tulasi in Hindu's house, in Sanatani's house. And the Tulasi is the continuously it provide you oxygen. Jai boliye Narayan Bhagwan ki. Jai boliye Tulasi Mata ki. Jai namas Tulasi Kalyani. Namo Vishnu Priye Suve. Namo Moksha Prade Devi. Nava Sampada Pradayike. Namas Tulasi Devi. Namo Vishnu Priye Suve. So it is the beloved ones of Vishnu now. So that's why we salute the Tulasi. From that time, continuously, she is serving this universe. Many, she is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's a better if you're quarantined, if your custom allow you. So take some Tulasi seed with you, if you haven't already done this. And Tulasi is the wonderful, it need to go everywhere. And this is for the human welfare. Everyone deserves to take advantage from this divine herbs, Tulasi. That's why Tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And Tulasi is offering to Saligram. And Saligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Saligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is what is the Saligram. So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the Tulasi, it is saying that as a Vishnu. That's why many people they keep at least five Saligrams. The five Saligrams, one represents Shiva,
one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This is Pancha Devata. So everyone, that's, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a five saligrams. So everyone can keep in saligram and tulasi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first, then they supply first is oxygen mask. So nature will give you oxygen mask in your home. When you plant tulasi in front of your door, if in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That tulasi is oxygens, and that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial tulasi. If you put in tea, there is tulsi tea as well. If you wear tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always two pieces of tulasi, that removes the bacteria and helps you. The tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and tulasi's mahima. And Jai Bali Siyavara Ramachandra ki, Jai Vishnu Bhagwan ki, Jai. Jab Sankhachud ko, jab se Sankhachud ka bal bahut bal gaya, bada tha, kyunki patni vrata dharma se, tab kya ho gaya ki Vishnu Bhagwan chhal karne ke liye gaye. Jab Vishnu Bhagwan ne jo Krishna kavach chhin liya, vriddha brahman banke uske baat mein apati bankar ghar mein chale gaye. और दानव शंखचूड के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए. तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए. विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा, उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए, पति आ गए. तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया, पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया, पाँव धो लिया, घर में लेकर गया, खाना दे दिया. रात में फिर रतिक्रीड़ा किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया. इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रति है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है. ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी, तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है. तो इस दुनिया में पति व्रता धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है. जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव, और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी, जब इनका पत्नी व्रत धर्म, जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया, तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा. जय बोलिए भगवान नारायण की जय. तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, नहीं तो कोई. जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है, तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है. और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं, और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है. तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन है. तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है. इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है. तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को. तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूँ. तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी, इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दे, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है. इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए. तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया. श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े. दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े. तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे. इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है. तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है. इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर
क्या है कि अपवित्र होता है लेकिन मन नहीं हो सकता है, आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया, वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है। अभी सत्ययुग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे, तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है। इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है, तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था, अब क्या है शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

0: So still, it means if you go to Nepal, directly you can observe the Kali Gandaki and its Shaligram. And that Shaligram is now in Museum of the London and Museum in Australia. And many countries, they are the exploring and innovating and experimenting. And it is saying that when the ocean was moving, that time the plate of this earth was moving. That time the thousands and thousands of years, the insect and all the creatures, they trapped and it became the chakra. So that is in Puran. So the there is also the history also showing this one, research also showing this one. So it is saying there is a quite a similarity. And this story, this book is written himself, Mahadeva, and later on Vedvyas wrote this compiled this Shiva Puran. And he wrote this thousands years before. And Kali Gandaki also thousands years before. So it's a quite a similar and easy to understand and believable. The Tulasis and this wonderful story. There is a little bit tragedy of Tulasi, but it is saying that's good cause. And also Tulasi is worshipped now. So what about some other Puran? So because we are daily using Tulasi, and all the Saiva, all the Vaishnava, all people, they know the Tulasi, the basil, herbs nowadays. Ayurveda accept, and they are making now not only the mala, so they are making lots of Tulasi's tea and Tulasi's powder and Tulasi's some herbs and Tulasi's tablets. So that's why Tulasi is quite a bit concerned nowadays. So that's why we'd like to explain some other Puran's story as well. So in Swastani Puran, in Swastani Vratakatha, so have you heard the Swastani? In Swastani Puran, it says like, so Tulasi's origination, it talks about Tulasi. There is the story is different, but the nature is same. There was a Danava, demons, and his name is Jalandhar. So Jalandhar was a brave, brave demon. And Jalandhar's wife is Brinda. And Brinda was also a beautiful woman. He is also maintaining Pati Dharma, Pati Vrata. So Pati Vrata or Pati Dharma. So for man, this is a Ek Nari Brahmachari. So we were married, he is also Brahmachari, but with only one woman. So woman also, she is also Brahmacharini, just for one husband. So that is, so which is very powerful, as we mentioned before. So Brinda also maintaining that Brahmacharini. And also Jalandhar was also, there was a very brave. But he was the demon. He always saw the demon nature. He used to go God's place, houses, and destroy the temples. And he is torturing the Mahatma, Rishi Munis, and doing so many unjust things, violence. So there was, the time was a little bit difficult. And everyone went to Shivaji. And Shivaji told that, well, I cannot do anything now. Just you need to go and ask to the Vishnu. Because I gave the blessing to him, and he is the devotee of Shiva. So there is the problems. So that's why what happened is he need to go and worship. So Vishnu, everyone went to Vishnu. And Vishnu says that, well, I cannot help you. Only Mahadeva can kill the Jalandhar. Without Mahadeva, no one kill. But I can help you one thing. That is, he has got the Patni Vrata Dharma. So without destroying the Patni Vrata Dharma, without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And he, the Vishnu, when Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Vrata Dharma, Pati Vrata Dharma, both of them. So Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar. And Jalandhar went to fight. And they are starting fighting. And started fighting. And hundreds and thousands of years that passed away. So but Jalandhar was so brave. Still, he did not defeat it. So this Puran is that in the Puran, that Tulasi Mata, Shaligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूड़ की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया, उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए, पाषाण विष्णु, क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, वैकुंठ में चली गई। इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं, ये शिव पुराण का कहानी है। शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये तुलसी ने जो शरीर देह त्याग किया था वो गंडकी था। गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, शालिग्राम वहीं मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह, तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्यचित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में, तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी में, स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसे ही कहा कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था, संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था, वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया, और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ, शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन, दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक एंड विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड वेन द टाइम द वृंदा सो द विष्णु, विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो, he faint, he lost there. She was so beautiful, and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate, and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. He, my husband is used to. And then before coming Brinda, before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived, I'm very tired with the Mahadev fight, can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever you wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here, I'll offer you my lord, I'm waiting for you, you must be tired, I'll give some good massage, come here. And she gave good fruits and everything, and she did the arati for her husband, and everything done, and that Vishnu did his notorious things, his performs that, and the Brinda overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Raslila with Brinda, in the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu sent message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came, the big sound, massive sound came, and that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only she, the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted, you don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda course, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth. so that you cannot move anywhere else. Because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. So, फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्थानी पुराण में वृंदा ने 4 श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्थानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया, उसके बाद में वृंदा ने 4 श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े, तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी, कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए 4 श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु 4 कर्सिंग देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन. And that's why in prayer, everywhere, we use the kush grass. As we mentioned earlier session is, kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly, she calls the grass, bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isiliye, is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur क्या है कि हम जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बाथ रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष, मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउअडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in your conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है. जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है. दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है. पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू. सो दैट्स व्हाई इन हवन ऑल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड. People woods, tulsi woods, kush grass, tulsi wood. So when you death also in symmetry, if your body is symmetry cremate with the wood of the people, kush, tulsi, it says like it will be purified your body. And spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that pancha pallav. Eh? People, marne ke samay mein kya hai ki thodi si bhi people ke पेड़ लकड़ी और तुलसी की लकड़ी साथ में रख लो और चिता में कोई भी किसी का भी चिता पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है। इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉन होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए समिदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड। सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और बाइजल ट्री द तुलसी के नजदीक जाके चेक करें सो यू विल गेट द हाई टेम्परेचर हाई लेवल। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज तुलसी इज ब्यूटिफुल एंड देन पीपल इज ब्यूटिफुल। सो इट्स एज नो मैटर वट एवर स्टोरी इज कनेक्टेड बट दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स। सो मेडिटेटिंग अंडर द बनियन ट्री एंड ब्रिंगिंग द कुश ग्रास इन योर फ्लावर पॉट एंड प्लांटिंग द तुलसी कुश ग्रास इज वंडरफुल। That's why our saint and Rishi Munis, they ate that every prayer. You need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal, and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalasa also, that we put that if you see that in the kalasa there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav, mango and peepal and aak and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan and Australia and some other country, Canada. Nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. इसीलिए पीपल के रुख में ध्यान करने से, पीपल के रुख के नीचे बैठ के ध्यान करने से श्वास प्रश्वासन में आश्वासन तो यही है। और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया। कब प्राप्त किया, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी ऑस्पिशियस है, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी की कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that's Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning. The great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We have got, we finished many chapters today. So which is important also, we'll not have time, some other time to read in detail. That's a long, long verses. And also, it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
2: भगवान की जय श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की जय श्री माधव कृष्ण भगवान की जय विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश

0: ओम बोले श्री श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवा पुरुष महादेवा की जय। श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: जय बोले भोले बाबा की। सो इन शिव पुराण व्हाट एवर टॉक्स the Sustani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant, the change your vision, visuality. तो शिव पुराण हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है। और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए ब्रह्म एक है, तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है। वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है, सारे शास्त्रों ऋषि मुनि संतगण महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए। फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है, संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, इजन इट। So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो, यू विल क्रॉस द रिवर। इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इंक्रीज फेथ ऑल्सो एंड फॉर द फेथ मेनी स्टोरीज इज कम्स, मेनी थिंग्स इज कम्स। सो दैट्स व्हाई देयर इज थ्योरीज। वन इज यू रिमेन हैप्पीली without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutas dehasya punaragaman kutaha. That means, yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvak's theory is that said. But in spirituality, it says like there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize when we summarize that the Tulasi's devotions. And how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, आज के लिए आज हमने क्या सुन लिया कि रुद्र संहिता में पहले से अभी तक क्या हुआ कि पार्वती जी का डिवोशन तो हमने सुन लिया था, ऐसे करके जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया। पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया। इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है। आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था। तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा। जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है। शिव पुराण के अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया। तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए। शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सौर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are like doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kya mata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare hain. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए

People have Hamare disciples here all. They come, they are not coming here for working here. They are coming for Mahaprabhu ji ke, aur Mahaprabhu ji ke, Mahaprabhu ji Devpuri ji ka. Wo jo hai, that is the first. And so Madhavanand ji, he went from his house. From his house he went out. It was only like this. And he brought Mahaprabhuji. Mahaprabhuji jo hai, he came to my village, to my mother. And here my was staying in my house. And there was one very nice person in Rupavas mein. Aur wo thoda matlab theek nahi tha, to dheere dheere chalte the. But he was no very great, standing very great. Wo Mahaprabhu ji ke paas aaye the, to wahan bitha diya ki baitho aur padhao. To baap ji ke wo nahi the itna, chota se hi se baap ji, Mahaprabhu ji. And wo aate the, then ghar pe aate the. Phir wo aate, wo baithte the. To Madhavanand ji, our Swami Madhavanand ji, baap ji ne nipla hamare Rupavas se. रूपावास में रखा है. रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है. लेकिन वो थोड़ा अब डब चब लगे हो गए यूँ से भी जगह है. हाँ, लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा. और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गाँव हैं, तो रूपावास कंट्री is the jaja, wherever I am in the other countries, very many countries. So where are you going? To Rupavas. Yes, my name is Rupavas in the whole world. Athara gaon wala rupa hai wo nahi jane, lekin wo mera Rupavas Gujarat wo bagair se bhi ho, lekin hamare Rupavas. To wo the tak जब भी मैं जाता हूँ कि कहाँ से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है. अब वो छोटे मोटे लोग हैं, उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें. तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है. अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे, कि मैं मनुष्य हूँ बस. अब हम मनुष्य है, तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है. जाति हमारी एक भारत की है, और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना. हाँ ठीक है, आप मेघवाल हो, गर्ग से हो, जो भी हैं, सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का. तब देख लेना, उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा. हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने. हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं, ये प्रेमानंद जी. अच्छा, प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो. हाँ तो वो इनका है, प्रेमानंद जी का. प्रेमानंद जी का इतना बहुत गाँव देश है, और देश में गाँव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी, नीचे सभी जगह है. और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है. ओके, लेकिन आप देखेंगे, इनको देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है, प्रेमानंद जी का. तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए एक बार.

0: लोग गए फिर वापस आए। और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की। बोलो श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री मारवानंद जी सद

अलख पुरी सा महादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन।

0: ओम शलपुरजी महादेव की जय। देवाति देव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सतगुरुदेव भगवान की
1: जय।
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुरजी गुरुदेव की
1: जय।
0: आज के आनंद की
1: जय।
0: सब संत शिवनि महात्माओं की
1: जय।
0: माता पिता गुरुदेव की
1: जय।
0: हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आप सब भक्तों की जय।
1: महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की
2: जय।

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

गोचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

दया मीन्स मर्सी, दया धर्म का मूल है, द दया इज मर्सी इज द रूट्स ऑफ द धर्मास। पाप मूल अपमान, द पाप मीन्स सिन, द सिंस दे आर गिविंग अनहैप्पीनेस टू पीपल एंड द सिंस मीन्स टू किल समवन, टू गिव समवन द बैड वर्ड्स और टॉक द समवन लाइक अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज गिविंग अनहैप्पीनेस एंड इट क्रिएटिंग सिन। इज वेरी डीप डीप डीप स्क्रिप्चर्स नॉलेज, इट इज वी रीडिंग मोर देन 25 years, बट स्टिल their roots so deeply go, each and every words that explanation is given there, what is seen anywhere, if some ants dying from us, by us, we walk, if ants died, also there comes sins. But somebody killing two animals, what do you think? How much big sin that? So for that call, paap mool abhiman hai, तुलसी दया न छोड़िए, यू नो तुलसीदास जी, दैट इज हिज पोएम दिस, रामायण, हु रोट द ग्लोरी ऑफ द रामा, द तुलसीदास जी। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में है प्राण, एज लॉन्ग द प्राणास इन द अवर हार्ट, एज लॉन्ग वी आर ब्रीथिंग, डोंट गिव अप द मर्सी। और तुलसी क्या करसी, तुलसी दैट तुलसीदास जी, तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी बन का घास, कृपा भई गुरुदेव की तो बन गया तुलसी दास। तुलसीदास जी, एवरीबॉडी रिस्पेक्टिंग एंड व्हाट कॉल वर्शिपिंग टू तुलसीदास जी, ओ तुलसीदास जी आर सो ग्रेट सो ग्रेट। सो ही रिप्लाइड, आई एम द ग्रास ऑफ द आवर फील्ड और गार्डन, नो यू नो तुलसी वन तुलसी प्लांट, तुलसी दैट आई एम सिमिलर लाइक दिस ग्रास, बट ब्लेसिंग ऑफ द गुरुदेव, ब्लेसिंग ऑफ द रामा, ब्लेसिंग ऑफ द हनुमान, दे गिव अस मी ब्लेसिंग दैट बन गया तुलसी दास। दास मीन्स स्लेवर ऑफ द गॉड। महाप्रभु जी वन होली गुरु जी भजन, दासन का दास प्रभु मये बनावो, हे प्रभु ले मी योर स्लेवर स्लेवर, give me blessing, give me blessing, give me blessing. So for that human life is not normal life, human life is not like only eat and drink and live and sleep and live in this world and out enjoying, this is not sufficient. So for that human life, the yogis, the gurus, they give us, the gods give us the divine scriptures and divine god names, and gurus always guiding to devotees to divine path that you came in this world. So get self-realization or inner peace, harmony, peace, tolerance and understanding between the family, between the culture, between the religions, and between the nation. This is slogan of Vishwa Guruji. So that we are very happy and we are very, very thankful to always our Parampara Rishis that they gave us that huge, huge God glory name. In the India, one great, great goddess. Always I was thinking, you know, not only in India, but mostly everywhere around the world, only mothers, they are more devotees to God than men. Why this is happening? Every satsang you go, there are majority of the mother or sisters, and what called brother or the fathers, or they are less quantity. Because the mothers and sisters, they are more the toward thinking to God. And in similarly in India, that by Meera, the divine bhakti she had, and she was especially in Rajasthan. She born in Rajasthan and she was great devotee of God. And she write one bhajan, a divine bhajan, you know that she

नारायण भगवान की जय। सो दिस इज डिवाइन भजन आवर होली गुरुजीस इनर हार्ट डिवाइन फ्लावर इज केम आउट एंड ही रॉट इन बुक एंड दिस भजन इज इंस्पायरिंग टू भक्तास ओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मेक योर फ्यूचर इन प्रेजेंट देयरफॉर वेक अप रिमेंबर योर ड्यूटी एंड फुलफिल योर धर्मा दैट इज ह्यूमन लाइफ।